तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोविंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ। दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी। पांच प्यारे

मन में चितवो चितवनी उद्यम करो उठ नीत, हर कीर्तन का आहरो हर देह नानक के मीत। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्त आखिए करते का हुए विचारो, तत्कर गाव हो सोहिला सिवर।

राग तनासरी महला पहला, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसाही पातशाहियां दे प्रतख सब रूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान तर के बोलो जी हे अकाल पुरख वाहिगुरु अंतरयामी सतगुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज दीवाना दी समाप्ति तो उपरंत आप जिया दे पावन पवित्र स्वरूपा दे बस्तरां दी सेवा अते कीर्तन सोहिला साहिब जी दी बाणी दे जाप होए हन गुरबाणी पढ़दियां सेवावां निभांदियां होईयां सरबत भुल्लां दी कृपा करके खिमा बख्शनी अगाह वास्ते समत बख्शिश करनी चार पहर दिन आप जी दे भाणे अंदर सुखां लदा बतीत होया है चार पहर रहण आई है कृपा करनी आप जिया दी याद अंदर ही बतीत हो जावे सचे पातशाह जीओ कृपा करनी अमृत वेले तक शरीर विच स्वास रहे ता अमृत वेला बख्शिश करके निवाजना

हाथ होवै असगाहु। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। मन्ने की गात कही ना जाए, जे को कहे पिछै पछुताए। कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध। मन्नै मोह चोटा ना खाए, मन्नै जाम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पत स्यो प्रगट जाए। मन्नै मग ना चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्नै पावह मोख द्वार, मन्नै परवारै साधार। मन्नै तरै तारे गुर सिख, मन्नै नानक भवहै ना भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।

कार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै हो वै सच यार तवलै उपर किता भार।

सो घर के हा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेका संखा केते वावन हारे केते राग परि स्यो कही अन केते गावन हारे गावह तुहनो पौन पानी बै संतर गावह राजा धर्म दुआरे गावह चित गुपत लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इदासन बैठे देवत्या दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नरखी सर।

सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसे जाय ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर जिन से माया जिन उपाई कर विखै कीता अपना जेव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुकम न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान के करह बिभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साद संजोग वे जोग दुकार चलावह लिखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुर

एको वेस एक दू जी बाव लाख होहे लाख हो वह लाख वीस लाख लाख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीस ए तो राहे पात पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगन देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगते छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राति रुते थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे काड़त घड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश

मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह।

कहां विसनपद गावे गंग क्या पिंगल पर्वत पर पवन करतार करुणा में दीन बेनती करें संग सहाय सो आवे।

साधु के संग पाप पलायन साध के संग सर्वथान गम साध के संग नहीं कचकाल साध के संग कुलु कतार साध के संग इहा

साथ के संग सुनो हर नाव, साथ के संग न मनते बिसरा, साथ के संग लगे प्रमीठा, सह संग पे आज्ञाकारी, साथ के

0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया,
1: ब्रह्म ज्ञानी
0: सदा समदर्शी,

ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सज जागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहि निवास।

आए बौलस कर मान को ऊपर करे आस सबते आप जाने बलवंत किसे न बदे आप अहंकारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान कोट कर्म करे अवतारे अंत पस्या करे अहंकार अनक जतन कर आत्म नैन्द्र वापस को जो पला कहावे सर्व की रह जाका मन होए जब लग जाने मुझते कछ होए जब जाने मैं किछ करता।

संत के दुखी की जड़ के चिनाहे, संत के दुखी को बना रखना रे, संत का दुखी यूं बिल्लाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा है,

0: संत का दुखी सदा सहकाइये,
1: संत के दुखी ना मरे ना जवाइये,
0: संत के दुखी की पूजे ना आस,
1: संत
0: के दुख ना त्रिष्ट है कोई, कितना मेट है कोई, सब करते इसके वो करने हारे।

ब्रह्मे जन जन में पार ब्रह्म सहस्यान बलया ना जाइय सफल दर्शन पेगत पनीत।

जेवा एक सत अनेक काहू बल न पहुंचत प्राणी निराहार निर्भय सुखदाई अनक भगत बंदन नित करे सत बलिहारी सतगुरु अपने

आपन चलतो आप करने हारे अपनासी सुखे अपन आसन जब पूरण करता प्रसोए जब अभगित गोचर प्रावे का जब नाथ निरंजन गोचर गादे अपने आपा पिय चर जा

0: ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपे शांत प्रसाद। चक्कर चहनर बन जातर पात नहंजे।
1: रूप रंग रेख पे को कह न सकत के।
0: अचल मोर तन पाव पर कासम तोज कहिजे।
1: कोट इंद्र इंद्राण साय साहन गणिजे।
0: तर पवन मिहीप सुर नर असुर नेत नेत बन।

0: सदा सर्वदा रित सिद्ध निवासी।
1: चरपर चंद त्वे प्रसाद अमृत कर्मे अनमृत कर्मे अखल जोगे अचल भोगे।
0: अचल राजे अटल साजे अलख धर्म अलख।

0: राम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम
1: आप रूपम एकोस्तत एक पुरकव दूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आदि रूप सूत
0: अंगहीन अपंग अनातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व

0: कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवही बोचित
1: मधु बर्षम तय प्रसाद गुण गण अवतार।

0: जी जल निवाज है गनी मुल्क राज है।
1: मुक्त स्वरूप है तर मुक्त भूत है पर मुक्त प्रवाह है सचुक्त सदा है।
0: सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तों पर राज है सदा सर्वसा।

0: उक्त स्वरूप है, अशिज्य है, अशूत है, के नरकन परनाश है, पृथ्वीओल प्रवास है,
1: निरुक्त प्रवाह है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनुप है,
0: निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त।

0: समस्तल निवास है, अगंजल गनीम है, रजायक रहीम है।
1: समस्तल जुबा है, के सायक नायक, नरकम परनास है, के अस्तल निवास है।
0: के सरबल गवन है, हमेशल रवन है, तमामल तमीज है, समस्तल अजीज है।

0: चित चरण नाम अन शिज गात आजिज न बात
1: भंडार अंठ अपार
0: आ टीट धर्म अत टीट कर्म अन ब्रण अना

0: कोट तुरंग करंग से कूदत पौन के गौण को जात निवारे एते पै तो कहां पै फूपत अंत को नांगे ही पाए पदारे
1: जीत फिरे सब देश शाम को बाजे टोल मरदंग नगारे
0: गूजत गूढ़ गजान के सुंदर हिस्तक ही हजराज हजारे
1: भविख भगवान के फूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
0: श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सदारे
1: तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम अनेक अनेक बसिक
0: वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखे
1: कौन हार जति जत तार सबे सुख चार हजार के देखे
0: श्री भगवान पजे बिन फूपत एक रति बिन एक ना लिखे
1: शुद्ध सुपात रंत दुबास सुसार सनातर जान दलेंगे
0: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे
1: वीर पार बड़े बरियार विचार सार की तार पचैया
0: तोरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया
1: गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया
0: साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक

0: प्रमाद समूह प्रसन्न फिरे जग सतर सबे अब लोक चपेंगे
1: मानवेंद्र गजेंद्र नरातक ज्यों तलोक राज करेंगे
0: कोट इस नानक जा एक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे
1: ब्रह्मेश्वर विष्णु सचिव दंत पसे जम पास करेंगे
0: जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे
1: कहां पयो जो दो जो जन्म मूल के बैठ रहे हो भक्तान लगायो
0: नाथ फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो
1: बस गयो बस के हाथ सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैठ बतायो
0: साच कहो सुन

0: मन प्यारे तू सदा सच समाले।
1: अगम गोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जाने।
0: जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाने।
1: आखे तां वेखे सब तू है जिन जग तो पाया।
0: कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया।
1: सुनारंजने अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया।
0: पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया।
1: जी जग सब खुद पाए वेख परसन आया।
0: लाभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु पला पाया।
1: कहे नानक जिसनू आप तुठा ते अमृत गुर ते पाया।
0: भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केहरी बिखम मार्ग चलना।
1: लाभ लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुता नाही बोलना।
0: खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना।
1: गुर प्रसादी जिने आप तजिया हर वासना समाणी।
0: कहे नानक चाल भगतां जुगो जुग निराली।
1: तू चलाए तिवें चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे।
0: जिव तू चलावे तिवे चले जिन्ना मार्ग पावे।
1: कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा ते आवे।
0: जिसनू कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे।
1: नानक सच्चे साहिब ज्यो पावे तिवे चलावे।
0: एहो सोहला सबदो सुहावा सबदो सुहावा सदा सोहला सत गुरु सुनाया।
1: एहो तिन के मन वसिया जिन तुरों क्या आया।
0: एक फिरे कनेरे करे गल्ला गली।

0: ना जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए
1: सहसे जीव मलीन है कत संजम तोता जाए
0: मन तो वो शब्द लागो हर स्यों रहो चित

0: नित करे रसना कहया कछु न जानी कहे नानक सतगुर बाजो होर कच्ची बाणी
1: का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ
0: शब्द रतन जित मन लागा।

0: होर आनरा सब विसरे जा हर वसे मन आए।
1: ये शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया।
0: हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया।
1: हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया।
0: गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नगरी आया।
1: कहे नानक सृष्टि का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया।
0: मान चाओ पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनिया।
1: हर गाओ मंगल नित सखी सुख दुख ना व्यापे
0: गुर चरण लागे।

0: हे नेतर आंध से सतगुर मिले दिब दृष्ट होई।
1: हे सरवणो मेरे हो साचे सुनने नो पठाए।
0: साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी।
1: जित सुने मन तन हरिया हुआ रसना रस माणी।
0: सच अलख वडाणी।

अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासैं हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवै ताए सब थाई हुई सहाए दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुई सहाए दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाह पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन देठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाह जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निबाही तिन्हां समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाह पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाह पृथ्वी सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाह बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाह आप जी दे सिखां दा मान नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो समूह गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तो पंथ नू विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो हे निमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नियोटियां दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है आप जी दी महान कृपा दा सदका अमृत वेले तो लैके आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप अते नित नेम दियां बाणियां दे जाप सिख संगता ने रल मिल के कीते हन महाराज पवित्र बाणी दे जाप करदियां तो आप जी दे सेवकां पासों होईयां भुलां बख्श लैणियां अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी दा फलादेश दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते प्रवान करनी सब नू अपने दरो करो नाम दी दात गुरसिखां वाला जीवन चढ़दियां कला बख्शिश करके किरतार्थ करना संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के परिवारां विच सुख शांति वरतौनी आपस विच प्रेम इतफाक दी दात बख्शनी किरत कमाईयां विच बरकतां पाउनियां कारोबारां विच वाधे बख्शिश करने शरीरक तौर ते तंदरुस्तियां बख्शिश करदियां होया अपने दर घर दे नाल आप जी ने इस तरह जोड़ी रखना आप जी दे चरणा च अरदास बेनती है महाराज परमिंदर सिंह तथा समुचे ही परिवार वालों
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ।

सगल गुणा के दाते स्वामी बिनाओ सुनहो एक दीना देहो दर्स नानक बलिहारी जियाड़ा बाल बाल कीना आस प्यासी पिर कैताई ज्यो चात्रिक बूंदेरे कहो नानक जियाड़ा बलिहारी देहो दरस प्रभ मेरे अम्मे दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै गुर नाव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवै सो कहो टल गुर सेविया अहने ससहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहो कुरसहो तुद डिठे सच्चे पाते साह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहां दे

आई मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उबारा खौखट औ पौरा नदगाई अष्ट माल कौशक संग लाई।

जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी।

कि तान न्यो त्यों की ओट सचे पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जी धन धन सत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज सचे पातशाह आप दियां दियां दर कर प्रीतवान समूह संगतां कैलगरी निवासी समूह गुरमुख प्यारियां वल्लों संत बाबा नंद सिंह जी नानक सर कलेरां वालियां दी याद विच महाराज धुर की इलाही बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब परसों रोज तो प्रारंभ होए हन सचे पातशाह जीओ इस वेले आप जी के चरणा कमलां पास श्री अखंड पाठ साहिब जी दी संपूर्ण ताई दी अरदास है संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहिब वालियां दी याद अंदर भाई जसविंदर सिंह जी जस्सी तिन्हां वल्लों सहज पाठ साहिब जी दी अरदास है दो सहज पाठ साहिब भाई त्रिलोक सिंह जी वल्लों एक सहज पाठ साहिब भाई रविंदर सिंह जी वल्लों अते एक सहज पाठ भाई बलजिंदर सिंह जी वल्लों सचे पातशाह जीओ कुल पांच सहज पाठां दी संपूर्ण ताई दी अरदास है समूह संगतां वल्लों महाराज संत बाबा दर्शन सिंह जी कुली वालियां दी याद विच आप जी के चरणा कमलां पास अरदास है संत बाबा मीहां सिंह जी सियाड़ वालियां दी याद विच महाराज समूह संगतां वल्लों आप जी के चरणा कमलां पास अरदास है कृपा करनी सचे पातशाह जी उस समूह संगतां दीआं हाजरियां पेटावां चरणां ते प्रवान कर लैणियां सभनां दे नां थां आप जी जाणदे हो कृपा करनी सचे पातशाह जीओ जो जो भी परिवारां ने जिहड़ियां जिहड़ियां भी सेवावां निभाईआं सचे पातशाह जीओ चरणां कमलां ते प्रवान करदिआं होइआं दरों करों देह रोगता तंदुरुस्तियां बख्शणियां परिवारां अंदर आपसी प्रेम प्यार इतफाक विश्वास भरोसे दी दात बख्शणी किरत कमाईयां विच वरकतां बख्शिश करनियां बच्चियां नूं माता पिता दे आग्याकारी बनाउंदियां होइआं दुनियावी विद्या दे सहत ब्रह्म विद्या दी दात बख्शणी माड़ी भैड़ी संगत विशे वकारां तों बचा के रखना नाम दा रंग साधुआं दा संग निश्चा अभंग बख्शिश करना हर मैदान हर दीवान फतेह बख्शिश करनी सचे पातशाह जीओ समूह संगतां दीआं हाजरियां पेटावां चरणां ते प्रवान कर लैणियां कृपा करनी सभनां दे कारज रास करने बिरदबाणे दी लाज पैज पत इज्जत रख लैणी सचे पातशाह जीओ समूह संगतां दीआं अरदासां बिनय बेनतियां चरणां कमलां ते प्रवान करनियां श्री अखंड पाठ साहिब जी दी संपूर्ण ताई दी अरदास है सहज पाठ साहिबां जी दी संपूर्ण ताई दी अरदास है छे पौड़ियां आनंद साहिब जी के पाठ होए हन कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है जी दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगतां विच वरताउण दी आग्या होवे जो जी शके सो आप जी का ही नाम जपे कला वाहिगुरु जी की वरते कृपा करो जी पावन पवित्र हुक्मनामे बख्शिश करके समूह संगतां नूं नदरो नदरी निहाल करो सेई प्यारियां दे दर्शन दीदार मेले बख्शणे जिना मिलिया आप जी का ही नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या भई अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो

गुण निधान गुण तिन ही गाए, जाको कृपा तारी सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। गुण

अकाल तख्त साहब ते भरे दीवान विच इस नौजवान बीबी ने आख्या, खालसा जी मैं तरन तारण साहब दरबार साहब के दर्शन करने लई अपनी मासूम धी ते अपने पुत्र नू नाल लेके गई सी, पर तरन तारण साहब दरबार साहब के अंदर गुरमत की कोई मर्यादा नहीं रही, उत्थे काबज हो चुके महंत एक किस्म के गुंडे ते मुस्टंडे ने, उन्होंने मेरी मासूम धी नू नाल छेड़खानी की, अपनी जुबान तो भद्दे लफ्ज उचारे। जो मैं उन्होंने रोकने की कोशिश की तो जालमा ने मेरा मासूम पुत्र मेरे तो खो के उहदे गल नाल पत्थर बन के उन्होंने सरोवर विच डोब के मार दिता। यह गल सुन के उत्थे बैठे हुए सूरबीर योधे रोह विच आ गए। पंजाब की धरती ते तरन तारण साहब के दरबार अंदर इस तरह का उपद्रव हो रहा है? इस बीबी ने आख्या, खालसा जी हां, तरन तारण साहब बारे पहला भी बड़िया रिपोर्टा आईया सन कि तरन तारण की धरती से हुंदा की है। सतसंगत जो असं इतिहास पढ़ते हाँ तो हैरान रह जाने कि गुरुद्वारों में महंत योजा कुछ करते सन। कई बार साडे बंदे कह देंदे ने कि सारे महंत माड़े नहीं सन, ये कोई शक नहीं, पर जेड़े माड़े सन वह पुज के माड़े सन, उन्होंने को गुरमत ना की चीज ही कोई नहीं सी, उन्होंने अंदर रब का गुरु का कोई अदब कोई भय नहीं सी।

दखणी सच सरंदा सचा जानिया सचड़ा परवतगारू जन आपी ने आप साजिया सचड़ा अलख अपारू दुपुड़ जोड़ विछोड़ियन गुरबिन घोर अंधारू सूर्य चंद सिरजियन अहनस चलत विचारू सचड़ा साहिब सच

जीओ तन तन सतगुरु जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती सच्चे पातशाह जीओ जे हा चीरी लिखिया ते हा हुक्म कमाए कल्ले आवह नानका सदे उठी जाहे दे महावाका अनुसार दर कर दे प्रीतवान बीबी जसपाल कौर जी गरेवाल जो आप जी दी बख्शी आयु होके संसारक यात्रा करदिया परिवार नू सदीवी विछोड़ा दे गए तिना दे मृतक शरीर नू अगन भेट करन उपरंत आप जी दे हजूर सचे पातशाह जी अलाहणिया दे पाठ हुए श्री साहिब पाठ साहिब दे भोग पए राम कली सद शब्द कीर्तन छे पौड़िया आनंद साहिब जी कीर्तन होए सतगुरु जी कृपा करके अखरवाद घाट भूल चुक माफ करनी पढ़ी सुनी गुरबाणी सोध के सचखंड विखे प्रवान करनी जी गुरबाणी पढ़ी सुनी गुरबाणी दे फलादेश विछड़ी आत्मा नूं बख्शिश करना सच्चे पातशाह परिवार नूं पाणा मनन दे बल बख्शिश करने सतगुरु जी अब की बार बख्श बंदे कहो बहुर ना भवजल फेकरा दी मावा का अनुसार कृपा करके कृपा करनी सच्चे पातशाह जीओ कृपा करके परिवार दियां होईयां सेवावां लिखे लाउणियां सच्चे पातशाह जीओ शुभ कारज रास करने शुभ कामनावां गुरमत अनुसार पूर्ण करनिया सचे पातशाह परिवार नूं चढ़दियां कला करनिया कारोबार दे वादे हथ मरकार रखिया करनी सचे पातशाह जीओ चरण कमलां दी प्रीत बख्शिश करनी आप जी नूं सुंदर पोशाके पहनाए सेवकां दे लोक परलोक देश विशेष सुहेले करने बेअंत माया हाजिर होई माया सफली करनी सतगुरु जी आप जी दे हजूर पंचम कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजिर है जी दर ते परवान होवे सीत प्रसाद सतसंगत विच वरताउण दी आग्या होवे जी कृपा करके पवित्र पावन हुक्म बख्शो जी हुक्मां ते चलण दी सोझी बख्शनी

देव मोक राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपतासह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास अराग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चितवह उद्दम जा

कहे ठाकुर काहे मन भौ करया, उड़े उड़ आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे चरया, तिन कवन खड़ावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करया। सब निदान दास अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरया, जन नानक बल बल सद बल जाइए

पे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर ना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना, जो सेव है जो सेव तुद जी, जन नानक तिन कुर्बान, हर त्यावै हर त्यावै तुद जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जमकी फासी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी, जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करह हर।

गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सर वरड़ पई ले निवासा पानी पावक तिन्हें किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक ना चेत समूढ़ मन हर बिसरत तेरे गुण गले आ रहा ना हो जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरणा।

तारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेताज कीनी

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख

आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह

चाओ बख्शिश करना, ग्रीवनवाद समूह संगत दियां हाजरियां पेटावां दर प्रवान करनियां, शुभ मनोकामनावां गुर

जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। रहाओ जो किछ करे सो आपे स्वामी,

इस थार विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मिले आपे हर आपे झगर चुकावे हर आपे पंच तत् बिस्थारा विच धातु।